0: कूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया और हमने उनके सरों पर बादल को सायबान बनाए रखा और उन पर मन्नु सलवा उतारते रहे और उनसे कहा कि जो पाकीजा चीजें हम तुम्हें देते हैं उन्हें खाओ। और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया बल्कि जो नुकसान किया अपना ही किया।
1: وَإِذْ

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ
2: 0385569 अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
3: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
4: ऑफिस जीअं मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
1: पैसा मुकरर नवा अग रात 12 बजे का लागू थी विंदा। वजीर आजम जो चवण हो तो जेको वायदो कौम सा कयो हो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरो कयो आहे। तेल अघन में घटताई जो फायदो बिना देर अवाम के मुंतकिल कयो आहे। ईरान ए अमेरिका विच में मफामती यादाश्त ते सयूं पाकिस्तान जी वडी कामयाबी आहिन। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वजीर आजम चयो आहे ते इस्लामाबाद मुआहिदे के हतमी शिकिल डियारण में फील्ड मार्शल अहम किरदार अदा कयो। नायब वजीर आजम इसाक डार ए घरू वजीर मोहसन नकवी जो भी किरदार साराह जोगो रहयो। ईरान अमेरिका मुआहिदे से दुनिया में पाकिस्तान जो वकार वध्यो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ए कौम जा थोरा मञा मुखे पाकिस्तान जी दौरे जी दावत डिनी। कौमी वहदत लाए असां सब एक आयूं ए एक रहंदासीं। जंगबंदी असां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्ला खामनाई जी आखिरी रस्मुनि में शिरकत जी दावत डिनी। आखिरी रस्मूं 3-4 जुलाई ताईं थींदियूं। पाकिस्तानी वफद बि शरीक थींदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमरीका मुआहिदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ बि मंज़ूर करे वरितो। वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे भेटा पेश।

इस्लामाबाद मफामती यादाश नामे ते सयन बाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु रिथियल ॻाल्हियूं मुल्तवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छॾी। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुल्तवी कयो वियो। स्विस अख़्तियारनि मूजिब अमरीका ऐं ईरान विच में अॼु रिथियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस अख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति

तबाह थी विया आहिनि। हिज़बुल्लाह जे जवाबी हमलनि में 4 इसराइली फ़ौजी बि मारिजी विया। इसराइली हमलनि ऐं हिज़बुल्लाह जी जवाबी कार्रवाई बाद ॿिन्ही विच में जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ अमल बि शुरू थी वियो।

जेडी वेंस खां पोइ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी बि इसराइल ते तनक़ीद। ट्रंप चयो आहे त मां न हुजां हा त इसराइल ख़तम थी चुको हुजे हा। नेतन्याहू सां बहितर लाॻापा आहिनि पर खेसि क़ाबू रखणो पवंदो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस बि चयो आहे त अमरीकी हथियार इसराइल खे बचाए रहिया आहिनि। इसराइली वज़ीर दुनिया में पंहिंजे अकेले ऐं ताक़तवर इतिहादीअ खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। सदर ट्रंप ते तनक़ीद कंदड़ इसराइली वज़ीर होश खां कम वठी ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ
5: 08 85 500 63 00 33 8 55 69
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बे डरंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

खबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

0: होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिले आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: महंगाई सटियल अवाम के रिलीफ, पेट्रोल 74 रुपया 28 पैसा और डीजल 67 रुपया 31 पैसा सस्तो। पेट्रोलियम डिवीजन नोटिफिकेशन जारी कर छो। 74 रुपया 28 पैसों की लात का पोए पेट्रोल जो फी लीटर 299 रुपया 50 पैसा थी वो और डीजल जो नव अघ 311 रुपया 47 पैसा मुकरर। नवा अघ रात 12 वगे का लागू थी वा। वजीर आजम जो चवण हो तो वायदो कौम से कयो हो अलहमदुल्ला वो पूरो कयो आहे। तेल अघन में घटताई जो फायदो बिना देर अवाम के मुंतकिल कयो आहे। ईरान ए अमेरिका विच में मफामती यादाश्त ते सयूं पाकिस्तान जी वडी कामयाबी आहिन। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वजीर आजम चयो आहे ते इस्लामाबाद मुआहिदे के हतमी शिकिल डियारण में फील्ड मार्शल अहम किरदार अदा कयो। नायब वजीर आजम इसाक डार ए घरू वजीर मोहसन नकवी जो भी किरदार साराह जोगो रहो। ईरान अमेरिका मुआहिदे से दुनिया में पाकिस्तान जो वकार वध्यो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ए कौम जा थोरा मनया, मुखे पाकिस्तान जी दौरे जी दावत दिनी। कौमी वहदत लाए असा सब एक आयूं ए एक रहंदासी। जंगबंदी असा खिते में मुआशी खुशहाली इंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्ला खामनाई की आखिरी रस्मन में शिरकत की दावत दिनी। आखिरी रस्मू 3-4 जुलाई तई थी। पाकिस्तानी वफद भी शरीक थो। कौमी असेंबली ईरान अमेरिका मुआहदे से कौमी क्यादत के भेटा पेश करण वालों ठहराव भी मंजूर कर वरतो। वजीर आजम, नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल, वफाकी घरू वजीर समेत भी क्यादत के भेटा पेश।

इस्लामाबाद मफामती यादाश्त नामे ते सैनबाद अमरीका ऐं ईरान विच में अॼु रिथियल ॻाल्हियूं मुल्तवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छॾी। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुल्तवी कयो वियो। स्विस अख़्तियारनि मूजिबि अमरीका ऐं ईरान विच में अॼु रिथियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस अख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो।

जेडी वेंस खां पोइ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी बि इसराइल ते तनक़ीद। ट्रंप चयो आहे त मां न हुजां हा त इसराइल ख़तम थी चुको हुजे हा। नेतन्याहू सां बहितर लाॻापा आहिनि पर खेसि काबू रखणो पवंदो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस बि चयो आहे त अमरीकी हथियार इसराइल खे बचाए रहिया आहिनि। इसराइली वज़ीर दुनिया में पंहिंजे अकेले ऐं ताक़तवर इतिहादीअ खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। सदर ट्रंप ते तनक़ीद कंदड़ इसराइली वज़ीर होश खां कम वठी ज़मीनी हक़ीक़तनि जो जाइज़ो वठनि।

0: शकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: एर्शुस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इर्शाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी हाँ अवे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर राबते 0385-569-0359।

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
1: इसमें है हाई क्वालिटी PC 5 साल की वारंटी के साथ।
2: रॉयल एनफील्ड फैंस साथ।

0: के मुकाबले में मारण जी दावा कई हुई। आईके प्रूफ में पीरसन पी के कतल कंदड़ बिनी पुटन खिलाफ केस दाखिल। मकतूल अहमद बोजदार के नंढे भाव खावन बख्श बोजदार के प्रो थाने केस दाखिल करायो। केस में जाना वे बाद जवाबदार जहूर अनवर बोजदार निंड सुतल पी के कुआड़ी हणी कतल कयो। पीरसन के कतल जो केस दाखिल करने बावजूद पुलिस जवाबदार गिरफ्तार करने में नाकाम।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: 0306-16-23-793.
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003 आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-500-69.
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
3: न अदा
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836
7: मोहम्मद उमर गोरी 0319-1550-724
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

आप सर अपने हाल चाल बताते जाएंगे, सो जनाब कैसे ही बताइए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोग्राम में, यानी कि बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां जो कि हमारा भाई प्रोग्राम अपने किचन के कामों के दौरान सुन रही होंगी, तो उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और साथ ही साथ प्रोग्राम में आपका हमारा जो साथ है वो पूरे दो घंटे का रहने वाला है, यानी कि ठीक अब से लेकर पूरी तीन बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ। और बहुत ज्यादा वाली हम बातें करेंगे आप लोगों के साथ साथ जो कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी होने वाली हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये चीज आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए कि आप लोगों की खूबसूरती जो है वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ती रहेगी। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनके इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती आपको मिल जाती है, और खूबसूरती भी वो वाली जो कि हमेशा आपके साथ मौजूद रहे, तो वो प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो भाई ये नेचुरल अज़ा से तैयार शुदा हुए प्रोडक्ट्स हैं और ये ऑल स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप हमें सुन रहे हैं, चाहे आप मर्द हज़रात हैं, ख्वातीन हैं, तो ये प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों की ब्यूटी के हिसाब से हम बातें करेंगे और आप लोगों को वो चीजें पता चलेंगी जो कि शायद आप नहीं जानते हैं, क्योंकि अवेयरनेस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप प्रोडक्ट तो लगा लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट लगाना कैसे है, कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, कौन सी चीजें आपकी स्किन के लिए जरूरी हैं या फिर नहीं, वो चीजें इस प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलती है। तो बिल्कुल जी बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास दोबारा से मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।

होंगे जनाब आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। और इस प्रोग्राम में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो उनके बारे में बताया जाता है और साथ साथ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने की बातें की जा रही है। तो बिल्कुल आप लोगों के साथ साथ मौजूद रहते हैं, पूरे दो घंटों का आपका हमारा साथ होता है, साथ में आप भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो बिल्कुल जी आप हमें कैसे ज्वाइन करने वाले हैं तो जरा उससे जाने बातें यानी कि आप लोगों को तरीकेकार बताते हैं कि आप किस तरह से हमें ज्वाइन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में जो मैं आप लोगों से सवाल पूछने वाली हूँ तो जरा वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोगों ने आज जो मुझे जवाब देना है यानी कि जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं मुझे बताइए कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। यानी कि हमें भाई सारी हिस्ट्री तो पता है, यानी कि बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं है कि पता, लेकिन आज आप मुझे ये बताइए कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। क्या ये आप बात जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर नहीं जानते तो भाई आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो GLRKANA FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है, पेज के ऊपर आइए और पेज के ऊपर आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिल जाती है बिल्कुल लाइव, जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितने भी समाते हैं वो जनाब बताइए कि आप भी हमारे साथ साथ हैं और प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। ओके, सो आप टॉपिक को फॉलो करेंगे। टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों से पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे जल्दी से बताइए और साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक्स हमारे जो प्रोग्राम में आते हैं तो हमारे प्रोग्राम की रौनकें होते हैं, बिल्कुल जी हमारे प्रोग्राम की जान होते हैं। तो आइए जी हमारे प्रोग्राम को जान दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें भी अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। आकाश अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाय आपी, मैं आकाश अली पीरजादो फ्रॉम मोरो से, मेरा भाई शो सुन रहा है, दिली जान पीरजादो और सारे घर वाले आपका शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। सबको खुश आमदीद कहा जाता है। और चाचा खाली चुनी जो हमारे साथ मौजूद के लिए, अस्सलाम वालेकुम बेटा सिटू, हाउ आर यू? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? कहते हाउ वाज योर फ्राइडे? फ्राइडे बस सही रहा। और उसके अलावा AM अंसारी हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम टू ऑल, मैं ठीक हूँ, आप बताएं? AM अंसारी कहते हैं सिटू मेरी डी स्किन और व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स पता नहीं कब दिलाएंगे, एड़ी कड़ जेड़ी गर्मी में माता ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा व्हाइट मता ब्लैक एंड व्हाइट थी वया आयो या शायद ही टॉप या थी वेंदस्ता फ्यूचर जी गाल कयो था। और कहते शो लिसनिंग विथ कदीर देरो और हाजी गुलाम नबी मल्हा ममताज मन जो थो। चलिए अगर ये मैंने कुछ थोड़ा गलत रीड कर लिया तो उसके लिए माजरत कर देते हैं। वैसे आप थोड़ा आ जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से, मालूमात लीजिए वहां पर कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अगर मिल रहे हैं तो मुझे बताइए ताकि हम आपको फ्री में दिलवाएं, ठीक है? मुझे नहीं पता कि फ्री में आपको दिलवा सकते हैं या नहीं और मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिलवा सकें, ठीक है? और चाचा खालिद कहते हैं कि अच्छा हमने टॉपिक का जवाब दिया है। ओके जी, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और साथ साथ हमारे साथ मीरपुर खास से अब्दुल्ला महरीन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, बिल्कुल जी आप इस्तेमाल करते रहिए। अहमद अली शर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और इसी के साथ साथ दर्द दिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं? वेलकम टू शो एंड आई मिस यू, मिस यू टू, मिस यू टू। चलिए पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और साथ साथ जो है ना बताइए कि आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगा दी जाइए और खूबसूरत होते जाइए।

0: दीजिए FM 88
1: सिंध की आवाज। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

एंटी स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो अगर ये जो भी चीजें आप जानना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप इस प्रोग्राम में सारी चीजें जान जाएंगे. तो जब आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो उसके लिए आपके पास जो नंबर आपको प्रोग्राम में बताया जाता है उसके ऊपर आप रब्ता करते हैं. या तो आप कॉल करते हैं या तो आप मैसेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप भी परचेज करना चाहते हैं और काइंडली आपके एरिया के अंदर जो है ना वो अवेलेबल करा दिए जाए. तो फिर जनाब आपके एरिया में अवेलेबल करा दिए जाएंगे. और इसके साथ साथ आप डायल कर रहे हैं 03 15 799 0595. इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, उन्हें बताइए कि आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि अवेलेबल हो सके. इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब कि अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि आपके चेहरे की खूबसूरती जो ना वो हमेशा के लिए लॉक हो जाती है. जबकि आप जैसे जानते हैं कि भाई गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो गर्मियों में ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, कौन से प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल करने हैं. ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें इस चीज की कंफ्यूजन ही जो है ना वो प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर कर देते हैं. तो अगर आप भी इस चीज को लेकर परेशान है, कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आप लोगों का जो माइंड सेट है ना वो जरा सेट हो जाए एक जगह पर कि आपने क्या चीज परचेज करनी है और जो चीज आपने परचेज करनी वो क्यों परचेज करनी है. तो सबसे पहली बात, जब आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकेंगे. और अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया ना, इतने शानदार तरीके से तैयार किया गया है जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिल्क मौजूद है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोगों के स्किन को जो है ना वो फायदा ही फायदा पहुंचाती रहे. और इसी के साथ साथ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, क्लियर हो जाती है और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिल जाती है उन तमाम चीजों से जो कि ये चीजें आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो नुकसान से जरा फ्री हो और वो चीजें जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए वो चीजें आपके चेहरे से हट जाएं, तो आपने व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है जो कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नाइट क्रीम है जाहिर सी बात है. और इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा फेस वॉश लगाना चाहते हैं, तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी फेस वॉश भी मौजूद है एंड व्हाइट एश ब्यूटी सोप भी मौजूद है. तो ये तो आपके ऊपर है कि आप अब सोप लगाएंगे या फिर फेस वॉश लगाएंगे. अगर सोप की बात करें तो वो एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है. और फेस वॉश की बात करते हैं तो वो स्पेशली विटामिन सी से तैयार किया गया है. तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करते रहेंगे. इसी के साथ साथ अगर आप एक्नी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं और एक नहीं अगर आपकी जान नहीं छोड़ रहा, ज्यादातर ऐसा हो जाता है ना कि टीनएजर्स अगर आप लोगों में सुन रहे हैं तो उनके चेहरे पर जो एक नहीं आ जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से जाते हैं. ज्यादातर तो आपने बहुत सारी ऐसी चीजें ट्राई करके देखी लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके देखना है. क्योंकि जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्नी खत्म होते हैं बल्कि एक्नी मार्क्स हो या एक्नी किसी भी टाइप का एक्नी हो, ब्लैक पॉट्स हो, व्हाइट हेड्स हो, ब्लैक हेड्स हो और या फिर आपके चेहरे पर ऑयल ही क्यों ना हो, ये तमाम चीजें जो है ना वो कंट्रोल हो जाती हैं. और ये आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है. ये इतना जबरदस्त ट्यूब है, जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाता है. अच्छा, गर्मियों के सीजन में अगर आप कोई अच्छा सा प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं जो कि आप लोगों के चेहरे को ठंडक का एहसास दे, तो आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल लाजमी करके देखना है. और इसे आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है. इसी के साथ साथ अगर व्हाइट एश लवली क्रीम का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं तो व्हाइट एश लवली क्रीम आप लोगों के लिए एक फेयरनेस फार्मूला तैयार किया गया है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फेयरनेस फार्मूला आप क्या चीज है, ये क्या बला है, तो आप लोगों को बताते चलें कि जब खास करके ऐसा होता है ना कि आप कोई नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं, आपकी स्किन ऐसी है कि आपने कोई भी उसके ऊपर इस तरह का प्रोडक्ट नहीं लगाया है जो कि आपके चेहरे को खराब कर दे, या फिर आप डरते हैं कि हम नहीं लगा पाते, हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसके लिए
ही आपके लिए जो है ना वो फेयरनेस फार्मूले तैयार किए जाते हैं. उनसे आपको ये फायदा मिलता है कि आपकी स्किन फ्रेश भी रहती है, ग्लोइंग भी रहती है, आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहती है. मार्केट में आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फेयरनेस क्रीमें मिल जाती हैं, लेकिन जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम की जानेब आते हैं और व्हाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, तो उसके बारे में पहले जरा जान लें कि क्या ऐसी इसकी खास बातें हैं जो कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए. तो व्हाइट एश लवली क्रीम सबसे पहली बार रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन का फार्मूला है, यानी कि इसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल एड किए गए हैं. इसके अंदर वाइटामिन B3 है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन डी है, और इसी के साथ साथ सनस्क्रीन भी एड की गई है. यानी कि फेयरनेस क्रीमें तो भाई नॉर्मल सी फेयरनेस क्रीमें होती, लेकिन व्हाइट एश वालों ने जो फेयरनेस क्रीम तैयार की है तो उन्होंने एक्स्ट्रा एक चीज भी एड कर दी इसके अंदर जो है ना, वो सनस्क्रीन एड कर दी है. इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को खूबसूरती तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी. तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो कि फेयरनेस फार्मूला है, जिसे आप किसी भी उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कीजिए, बूढ़ों के ऊपर, जवान लोग हैं, मर्द हजरात, खवातीन, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है और अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर रहे हैं. अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली व्हाइट एश लवली क्रीम, जिसे आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं. बहुत एक जबरदस्त प्रोडक्ट तैयार किया है, तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा. जितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, चाहे आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगा रहे हैं, या फिर व्हाइट एश लवली क्रीम लगा रहे हैं, तो इन्हें लगाने से पहले अपना फेस वॉश आप लाजमी कीजिएगा. ठीक है, फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो है वो आपको मिले और आप हमेशा के लिए अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी करते रहे. इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि करबला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है. यानी करबला का वाकया तो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि करबला का जो है ना वो सबसे बड़ा पैगाम क्या है. इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं. फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को काइंडली लाइक और शेयर कर दिया करें.

0: बताओ कि जी फहीम शेख क्या कहते हैं,
1: ये तेरा काम है परवरदिगार,
0: बादल के आगे जुरत इनकार ना होगा, वाज़े है कि वो साहिब किरदार ना होगा। तफ़हीम इश्क जिसने भी समझा हुसैन अलैहिस्सलाम से, जीने का कभी भी वो तलबगार ना होगा। क्या बात है जी, जबरदस्त। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा खुश आयो, बस हाजिरी कबूल करें। जी जी बिल्कुल, आपकी हाजिरी कबूल करें। और आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। दर्द दिल कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी खुशियों को संभाल कर रखो, क्योंकि हर नेमत हर नजर को बर्दाश्त नहीं करती, और शुक्र और आजजी नेमतों की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आजकल हम जैसे अपनी खुशियों की जो ना नुमाइश कर रहे होते हैं, तो ये सही बात नहीं होती। जितना आप चीजों को हाइड रखेंगे, उतना आप जिंदगी में खुश रहेंगे।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट वाला कसीदा हमने यहाँ पर सुना. और इसी के साथ साथ एक और कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम आप लोगों के साथ साथ सुनने वाले हैं. प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है तो उसका जवाब आप मुझे बताते जा रहे हैं. मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि कर्बला का जो है सबसे बड़ा पैगाम क्या है, कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है, क्या आप जानते हैं तो मुझे बताइए. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए. एम अंसारी लिखते हैं, कर्बला का मकसद हक और बातिल में फर्क को वाजे करना था. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कर्बला में हक पर साबित कदम रहकर बातिल को शिकस्त दी. और कसीदा प्ले करना, चले मैं देखती हूँ आपका कसीदा लगाते हैं. और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं. और मोतिया सेठानी भाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू. और सनाउल्लाह बिरोही कहते हैं, अदी हम भी आपके साथ साथ हैं, शो में हाजिरी लगा चुके हैं, चलें जी, बहुत शुक्रिया. और फहीम कहते हैं, कर्बला का पैगाम है जुल्म के आगे कभी भी झुकना नहीं है. ओके, दर्द दिल आप हमारे साथ हैं, थैंक यू. किशोर भाई कहते हैं, शुक्र मेरे मालिक का, वो जिस हाल में रखे हमें खुश रहना है. ओके जी, बिल्कुल यही एक सोच होनी चाहिए.
1: दे अल्लाह राजी, पहुंचे थी दे अल्लाह राजी.
0: अच्छा, तो अगर हम ऐसा है ना कि मैं अगर किसी से ये कहती हूँ कि भाई हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, इस चीज का अगर आप यानी कि इस चीज को अगर आप समझ लेते ना, आगे जाकर आपको इसका अंदाजा होता है कि वाकई कुछ टाइम पहले जो हमारी लाइफ में ये चीज हो गई थी तो उसका हमें आगे जाकर ये फायदा मिला. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े नाशुक्रे होते हैं, अगर उनसे इस तरह की कोई बात की भी जाती ना कि भाई आप हौसला रखें, सब्र करें, आपकी जिंदगी में जो हुआ है वो बेहतरी के लिए होता है, यानी कि जो भी चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है, तो उन्होंने ना आगे से बस यही कहना होता है कि भाई हाँ हीजे को काम थोड़ा सही जिला हुआ हर नमाज केड़ो फायदो मिलो, यानी कि इतनी आपने ना शुक्रिया नहीं बना अपनी जिंदगी में. हमेशा जो है ना आपने ये सोचना है, ऐसा है कि भाई ये तो वाजे चीज है कि आप जितना शुक्र करते हैं आपको उतनी चीजें अता होती है, लेकिन आप जितनी ना शुक्री करती हैं उतनी जो है ना आपकी जिंदगी जो है ना ऐसी हो जाती है कि आप बस ना शुक्र ही रहें और आपकी जिंदगी में वाकई चीजों की किल्लत होना शुरू हो जाती है. तो इसलिए कहती हैं कि शुक्र में रहा करें, क्योंकि आप जितना शुक्र करते हैं उतना आपकी जिंदगी जो है ना वो खुशियों से भर दी जाती है, क्योंकि आप शुक्र करने वाले इंसान हैं. तो शुक्र करने वाले इंसान बने, ऐसा नहीं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ हो जाए कोई अगला इंसान आपको दिलासा दे रहा है, आपकी तकलीफ में आपके साथ मौजूद है, लेकिन आपने आगे से ये कहना है कि भाई हाँ ही जेको कम थे इन में केड़ी भलाई हूँ इन में छा हूँ ये छो थे मूसा, ये जो अल्फाज है ना ये मत निकाला करें, ये बहुत एक बुरी आदत होती है जो ज्यादातर आजकल के लोगों में पाई जा रही है. तो इन चीजों से जरा गुरेज करें. अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान करें ना कि वाकई जो आपकी जिंदगी में हुआ या जो चीजें आपकी जिंदगी में हुई, आगे जाकर उन चीजों का आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अंदाजा होता जाएगा कि वाकई जो हुआ वो बेहतरी के लिए था. और इसी के साथ साथ अपनी जिंदगी में खुश रहें.

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ हजार खान जतोई भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है प्यारा भाता की आयो, कहते हैं कि जी हम भी आपके साथ आते हैं। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ साथ मौजूद हैं प्यारे भाई जान।

रवि जी, क्या बात है. और साथ साथ जो है ना, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को ये बताते जा रहे हैं जनाब, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का या फिर आप इस्तेमाल करें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जो कि मैं आप लोगों को दूसरे घंटे में आऊंगी तो बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का क्या ऐसा कमाल है जो कि आप लोगों को मिलने वाला है. तो अगर आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर कीजिए और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए. और डायल करती रहिए 03 1579 0595. ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने एरिया में अवेलेबल कराइए, वहां से जाकर बस आनी परचेज करते जाइए और इसी के साथ साथ इस्तेमाल करते रहिए वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आपके खूबसूरती की जमानत है. इसी के साथ साथ टाइम हुआ चाहते हैं जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है. प्रोग्राम ही हमारे साथ साथ रहिए पूरी पूरी 3 बजे तक और सुनते रहिए वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरानी मीडिया मौजूद घर वजीर मोहसिन नकवी ईरानी क्यादत से मुलाकात कंदो। मोहसिन नकवी ईरानी क्यादत के अमरीका ईरान में तय थे मुआहदे के मुबारक देने से गुड गालन के इंदर मरेले बाबत मुशावरत कंदो। ईरानी परडेही वजीर अब्बास इराकची के आज स्विट्जरलैंड के दौरे का इम्कान। अमरीकी खसूसी नुमाइंदो स्टफ विटकोप स्विट्जरलैंड पहुंचल। अमरीकी न्यूज वेबसाइट मौजूद स्टफ विटकोप ईरान साइट में मामलन के गार्डन लाइ स्विट्जरलैंड पहुंचो है। ईरानी वफद भी स्विट्जरलैंड पहुंचन। जंगबंदी के ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान से फिजाई हमला जारी। पंज शहरी शहीद केतरा ही जख्मी। लबनानी अख्तियार मूजिब इसराइली जंगी जहाजन ड्रोन्स नबतिया के इलाकन में आबादियों के निशानों बनाया। इसराइली फौज पारा इमारतों से बमबारी का सिलसिलो वक्फे वक्फे से जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार मिस्र रवानो। चैन मुल्की परडेही वजीर इजलास में शिरकत कंदो। कायरा में थींदड़ चैन मुल्की इजलास में सऊदी अरब तुर्किया मिस्र जा परडेही वजीर शिरकत कंदा। इजलास में खिते सूरत हाल ईरान अमरीका मामलों की अगबराई का जायजो वरतो वेंदो। असांजी कोशिशन रंग लातो है खिते में जंग खत्म थी है। पाकिस्तान अमरीका ईरान के गाल की मेज से विहारो। पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कयो। वजीर आजम फील्ड मार्शल आस अवाम के वादायूं पेश कया तो। कौमी असेंबली में बजट के सेर दींदे नाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब चवा टैक्स निजाम में बुनियादी सुधारा कया। नंढन आबाद करण हारन के बिना ब्याज कर्ज दिना। आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण जो तकड़ो रिलीफ आवाम के दिनो है।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो नाए वगे खां रात अठ वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383 5569 0300 3855 69।

0: 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372-0242460100।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो

0: उठ मेहरा पर राब्ते दिलाए 03201800003।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

होगा वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी के साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो उसके लिए भी आप अवेलेबल करा सकते हैं. बस आपने डायल करना होता है 03-15-799-0595. जल्दी से इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए और उन्हें बताइए कि आपके एरिया में नहीं मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट्स. और इसी के साथ साथ मैंने पहले आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया. सो फिलहाल अभी जो है ना आप लोगों को मैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने हमें अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है तो उनको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं. और साथ ही साथ आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है तो जरा वो भी रिपीट करवाते हैं. तो आज के प्रोग्राम में जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं कि करबला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है. करबला का वाकया तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करबला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? आप लोगों तक वो पैगाम पहुंचा है या नहीं पहुंचा, आप मुझे ये बताइए जल्दी से. और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमें ज्वाइन कीजिए 888 और फेसबुक पर. ओके जी, आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं. और इसी के साथ साथ अगर हम आप लोगों के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जाना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं. तो अक्सर मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं. तो जब हम यहाँ पर डी स्किन क्रीम के बारे में बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार की गई है, जिसके अंदर विटामिन बीट्स मौजूद है एंड माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है और ऑल स्किन टाइप के लिए है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है. सिर्फ दो दिनों में वाज़ह नतायज के लिए डी स्किन वाइटनिंग क्रीम का आप जो ना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जदीद अज़ा जैसे अल्फा आर्बोटिन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन से भरपूर है ये क्रीम. अगर आप रात भर इस्तेमाल करते हैं तो रात भर ये क्रीम आपके चेहरे पर ऐसा असर करती है कि आप लोग खुद ही कहते हैं कि भाई वाकई क्रीम जेका है वो मजेदार है. अन खा अलावा तमाजी जल्दी जेका है वो चमकदार थी वेंदी, आई तमाजी चेहरे ते जेका डलनेस आई हुआ खत्म थी वेंदी, तमाजी चेहरे जी जेका स्किन है ना हुआ ग्लो जी तरफ वेंदी. अगर तमाम भी टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया तो तमाम के खबर हो जाए तो ही जेका क्रीम तैयार कई वही है, इन जे अंदर सब चीजों उहे आहिन जेके तमाम जी स्किन जे लाइ फायदो पहुंचाईंदी तमाम के, आई तमाम के इहा खबर हो जाए तो जदे तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा तो तमाम के बिन रातें जे इस्तेमाल सफा जबरदस्त रिजल्ट मिले तो. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका हर एक मानू जे लाइ तैयार कई वही है, मर्द हजरात आयो, खवातीन आयो, हर कोई इस्तेमाल करी सके. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, सोने से पहले लगाइएगा, लेकिन सोने से पहले जरा अपना फेस वॉश भी कीजिएगा. और फेस वॉश की बात आती है तो डी स्किन फेस वॉश आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में. जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश जो है जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है. इसका मतलब ये होता है कि जब आप डी स्किन का फेस वॉश अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे ना तो उससे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन जो है वो क्लीन रहती है और साथ साथ आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और आपके चेहरे की स्किन ग्लो की तरफ आती जाती है. आप लोगों की स्किन अगर मुरझा सी गई है, आपके चेहरे की स्किन मर रही है, तो उसे जिंदा रखने के लिए आपने जो है ना वो डी स्किन फेस वॉश का यूज करना है एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है. कई मरतबा ये चीज हो जाती है कि हम जैसे ही अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर आप लोगों की स्किन को ज्यादा जरूरत होती है प्रोडक्ट की, ऐसा होता है. बहुत से लोगों को ना मैंने देखा है जो कि भाई कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा आपकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि आपके चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर आपके चेहरे पर आंखों के हल्के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर आपके चेहरे की स्किन जो है वो झुर्रियों की जानिब चली जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना वो काफी काले काले निशान पड़ जाते हैं. तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है ना वो एक अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, एक अच्छा सा क्रीम होना चाहिए. उसके लिए आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जरूर ट्राई कीजिएगा. साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना है, जो कि दोनों चीजें आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली हैं. तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा. और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहे तो डायल कीजिए 03-15-799-0595.

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बताते जाइए। और ये हमारे साथ हैं जी, आज भी जब नामे हुसैन लबों पर आता है दिल अदब से झुक जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। इमरान अली बिरोही लाड़काना से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, सलाम पाक आर्मी, स्वीट शो प्लीज प्ले मेरी झोली भर दे, चलें ये आपकी फरमाइश लगाते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और शोनी कहती हैं आप ही जान में भी आ गई, सॉरी आप ही, मैं कुछ दिनों से शो को ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, आप ही मैं बहुत बिजी थी इस वजह से मैं नहीं आई। चलें कोई बात नहीं शोनी, अब आप आ चुकी हैं तो आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और ये सजाद अली जमाली हमारे साथ ही नवाब शाह से कहते हैं आपको भी खुश आमदीद भाई जान। इरम कहती हैं सिजानी, जी इंशाल्लाह मैंने उम्मीद तो करी है, अल्लाह पाक नसीब करेंगे।

अच्छा न न चाचा तुम टेंशन न कियो तुम का उमर न था पुछू उमर पुछण वैसे मुझे कम भी ना हो दो मां वो मानू है जो पांजे कम से कम रख दो है। अच्छा गुल मोहम्मद रिंद भास से गड मौजूद आयन कहते हैं ये दुनिया तुम्हें क्या देगी मोहसिन जिसने इमाम हुसैन अलैहि सलाम को पानी तक ना दिया। हाँ भाई सही गाल है। किशोर भाई कहते हैं कि अदी शुक्र करण ते अवां जो समझायो इलाही सुठो लगो मुखे मुझी गाल ते अवां जो समझायण वणंदो आ इलाही जो पंहिंजो पाण फील थींदो आहे पंहिंजो। हाँ ये हकीकत आहे वैसे अगर ॾिठो वञे न त इलाही चीज़ूं हूंदियूं आहिनि जेके मूंखे तव्हां सां शेयर करणियूं हूंदियूं आहिनि पर कॾहिं वक़्तु न आहे मिलंदो वरी कॾहिं अहिड़ो मौक़ो न आयो हूंदो जो उन्हनि ॻाल्हियुनि खे तव्हां ताईं पहुचायो वञे। सो अगरि कुझु ॻाल्हियूं तव्हां करे वठंदा आहियो त पोइ असांजी बि दिलि चवंदी आहे तव्हां सां कुझु ॻाल्हियूं करे वठूं ऐं उहे ॻाल्हियूं कुझु शायदि तव्हांजे बहितरी लाइ हुजनि ऐं वरी जॾहिं तव्हां जहिड़ा प्यारा माण्हू असां सां गॾु मौजूदु हूंदा आहिनि जेके सम्झंदा आहिनि चीज़ुनि खे उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त असां जेको कयूं पिया या जेको कुझु थिए पियो उहो सभु पॉज़िटिव तरीक़े सां वठंदा आहियो त पोइ अञा वधीक सुठो लॻंदो आहे। अच्छा सो तव्हां बि पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जिन माण्हुनि अञा ताईं कोन कयो आहे टॉपिक खे तव्हां फॉलो कयो था। गुल मोहम्मद रिंद भा चले मैं कोशिश करती हूँ बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है ज़रा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं उसके बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा हम आपके साथ मौजूद रहेंगे पूरी पूरी 3 बजे तक। सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: 88
1: सिंध की आवाज जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-3883-8569
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर 0301-3865-453
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहराबपुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन को जरूरत है जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो. अक्सर जब आप अपनी खूबसूरती को निखारने की जरा तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करते साथ ही ये चीज आप अपने जहन में रखा करें कि जब आप मार्केट जाएं अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो आप लोग ये चीज समझ लें कि आपने जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है, तो वो प्रोडक्ट सबसे पहली बात आपकी स्किन के मुताबिक तैयार किया हो और सबसे अच्छी बात कि वो जो है ना ऑल स्किन टाइप के हिसाब से हो. ऐसा होता है कि जब आप मार्केट जाते हैं आप लोगों को समझ नहीं आती बात और आप लोग जो ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में कि हमने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कौन सा लेना है, ये वाला सही रहेगा या वो वाला सही रहेगा. तो इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में जो है ना आप इन चीज़ों को जरा साइड पर रख देते कि भाई और बहुत सारे काम है हमें, तो इन चीज़ों को जरा साइड पर रखिए. तो मैं आप लोगों की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो उसके इस्तेमाल से पहले कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत आप लोगों की मदद हो जाती है और साथ साथ आप जान सकते हैं कि आप लोगों की स्किन के मुताबिक जो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं वो आप लोगों तक पहुँचाने कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हर तरह का प्रोडक्ट मौजूद है और इसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट भी आपके लिए अवेलेबल है. जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में आप लोगों के लिए जो है ना वो हर एक चीज़ ऐड की गई है जो कि आप लोगों की स्किन की हिफाजत करने के लिए है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए और साथ में डी स्किन फेस वॉश आपके लिए मौजूद है जो कि आप बिल्कुल लगाएंगे और डी स्किन का फेस वॉश आप अप्लाई कर सकते हैं 2-3 मरतबा आपने स्किन के ऊपर दिन में और रात में. और उसके अलावा अगर आप क्रीम लगाना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों के लिए नाइट क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, एक्नी ट्यूब है, सोप है, फेस वॉश है. तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो भी आप लगाना चाहते हैं, बस आप अपनी टाइप वाला प्रोडक्ट चूज कीजिए और परचेज कीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए. कोई सेंसिटिव जो है ना स्किन वाले प्रोडक्ट जो है वो नहीं, ऐसा नहीं कि भाई अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल जी कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के लिए मॉइस्चर है जनाब, आप लाजमी लगाइएगा, आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलेंगे. इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में. तो जिन लोगों ने अभी भी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. और इसी के साथ साथ जो है ना मैं पता नहीं क्या कह रही थी.

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें और इसी के साथ साथ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। ओके जी, सो आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोगों की बातें जो हैं वो सुनना और जानना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जी पैनल पर आते हैं तो आगे मैसेजेस हैं।

अच्छा इरम हमारे साथ है, इरम अच्छा करती हैं आप। और शेर अली फरहान हमारे साथ हैं, अली जमाली, नवाब शाह से प्लीज प्ले नजफ अली, ओके मैं कोशिश करती हूँ। और उसके अलावा साइम अमीर हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहती माशाल्लाह प्यारी आरजे मुस्कान कैसी है, सेहत तबीयत कैसी है, और वाइट एज एंड जी स्किन ब्यूटी शो तमाम बेहतरीन, टॉपिक सबर शुक्र नमाज और अपने रब के सिवा दुनिया के किसी भी यजीद के आगे नहीं झुकेंगे, सलाम शहीद करबला। वेलकम करते हैं हम अपनी प्यारी साइमा मीर को, और साथ साथ हमारी लिस्ट में एक कसीदा है तो जरा उसको भी सुन लेते हैं। और उसके अलावा जो हमारे साथ हैं जी, साइमा मीर दोबारा से कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, ऐसी बातें करने के लिए हमें और हमारी सिद्रा को एक अलग शो की जरूरत है। बिल्कुल जी, मेरा आजकल ये दिल चल रहा है, दिल कर रहा है कि मेरा ना ऐसा है कि भाई मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा शो करूं जो कि बिल्कुल लाइट सा हो, यानी कि अपनी तबीयत से बिल्कुल उलट, यानी कि लोगों को लगता है कि मैं जिस तरह का शो करती हूं तो मैं इस तरह का शो नहीं कर पाऊंगी कि वो लाइट सा हो, संजीदा से लोग हो, संजीदा सी बातें चल रही हो, लेकिन ये मेरा दिल कर रहा है कि ऐसा एक शो मैं करूँ और मैं शायद करूँगी। तो फिलहाल तो जो चल रहा है उसके ऊपर आप गुजारा कर लीजिए। और बहुत शुक्रिया साइमा, आप हमारे साथ हैं। अच्छा इरम क्या बात है, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी बात है, आप ख्याल रखिएगा अपना और मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ठीक है।

ओके जी, इमरान अली बिरोही हमारे साथ ही लाड़काना से लिखते हैं कि खून से चिरागे दीन ने इस्लाम जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, खुद को तो एक बूंद भी पानी ना मिल सके मगर करबला को खून पिलाया हुसैन ने, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहां में, सजदा किया तो सरना उठाया हुसैन ने, सबरे हुसैन को मेरा सलाम। इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। ओके जी शोनी, ठीक है ठीक है। अच्छा सरदार हाजी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ठीक हूँ भाई जान, कहते हैं दुनिया जी ना ही परवाह सिस्टर तवां ते खेर हुजे भा तवां जो मोहब्बतूं आइन। अच्छा गुल मोहम्मद रिंद भाई जान लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबर कर वफादारी का दर्स दिया है और उसने हमेशा ये बताया है कि कभी भी जालिम के सामने अपना सर मत झुकाना, सर हमेशा खुदा के सामने झुकाना, करबला में हमेशा वफादारी का दर्स दिया है और सबर का भी। चलें जी बहुत बढ़िया। और ये हजार खान जतोई भाई हमारे साथ कहते हैं करबला का सबसे बड़ा पैगाम हक और बातिल के दरमियान फर्क कुर्बानी सबर और जुल्म के खिलाफ खड़े होना, ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और इंसाफ के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करना चाहिए चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। योर टॉपिक आंसर ओके वेरी नाइस। अच्छा ए मंसारी कहते हैं सिडो बेसिकली देखा जाए तो हम नाम के इसके ऊपर ना मेरी भी यही सोच है कि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, हमारा वो जो यानी हमें जिस तरह अपना जिंदगी अपनानी चाहिए, जिस तरह हमें काम करनी चाहिए, जिस तरह से हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वो चीजें तो हम करते हैं नहीं। बस मुझे यही लगता है वाकई कि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, ये चीज भी हमारे सामने आ जाती है कि हमने कोशिश करनी है और हम जो है ना वो थोड़े थोड़े से यानी कि थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी के अंदर वो तमाम चीजें ऐड करें जिन चीजों का हमें हुक्म दिया गया है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप जरा अपनी जिंदगी को जो है ना वो आसान बनाने की कोशिश करें, अल्लाह पाक बाकी मदद करने वाले हैं। और चाचा खालिद कहते हैं कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। एग्जैक्टली बहुत कुछ है दुनिया में। और फहीम कहते हैं कि वो अपने बाप का दादा ओके जी थोड़ा सा हम जरा से स्किप करेंगे। और फहीम बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और चाचा खालिद कहते हैं वो उमर के बारे में जस्ट किडिंग, वो तो ईद शो में आप दोनों ने मजाक किया था, इट्स ओके मैं बड़े दिलवाला हूँ सो चलें कोई बात नहीं। वैसे वो मजाक जो है ना उसको मजाक के हद तक ही रखा करें, बाकी सब बहुत अच्छा है, अपना ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाजमी लगाइएगा। वैसे कल 5 तारीख होगी 5 मुहर्रम की, तो मैं कल आऊंगी और कल जो होगा मेरा मतलब ऐसा समझ लें कि लास्ट डे होगा, उसके बाद जो है ना वो हम 11 या 12 तारीख के ऊपर जो है ना दोबारा से आप लोगों को ज्वाइन करेंगे।

अच्छा आज की मतलब प्रोग्राम में जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर दें, क्योंकि मुझे जो है ना वो आज के प्रोग्राम में लाइक्स थोड़े कम नजर आ रहे हैं। तो मुझे जो है ना मतलब एक होता है ना कि ऑब्सेशन होती है कि भाई एक इंसान की, तो मुझे ये लगता है कि मेरे प्रोग्राम में लाइक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा दिखने चाहिए। तो लाइक्स जो है ना वो कर दें जिन लोगों ने नहीं किया। और साथ साथ जो है मैं आज जिन लोगों की जरा फरमाइशें स्किप करूंगी तो उसके लिए माजरत कर देते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी जो है ना मुलाकात कल वाले प्रोग्राम में तो होगी, तो जिनकी फरमाइशें रह जा रही हैं तो वो कल आकर मैं लगा लूंगी। और साथ साथ आपको ये जरूर मैं कहती हूँ जनाब कि आप इस्तेमाल किया करें जो भी प्रोडक्ट आपको मैं बताती हूँ, और वो जो प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ वो आपकी स्किन के मुताबिक होते हैं। उनके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता कि भाई आप लगाएं तो आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो जो भी मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेकर आती हूँ तो वो आप लोगों की स्किन के मुताबिक होते हैं, आप लोगों को जो है ना अच्छे वाले रिजल्ट देने के लिए होते हैं। तो जब भी आप इस्तेमाल करें वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके जितने भी यानी कि ऐसी चीजें हैं जो इनके अंदर ऐड की गई है तो वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, जैसे कि भाई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट मौजूद है। यानी कि अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं तो आप फेयरनेस क्रीम लगाएंगे, एक्नी प्रॉब्लम आपको आ चुकी है तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए सोप मौजूद है, आपके लिए फेस वॉश मौजूद है, हर तरह का प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आप जो भी अपने स्किन के ऊपर सूट करने वाला प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं उसे आप लगाइए, और जो है ना फिर मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। और उसके अलावा ये फूल कलियां ये चांद तारे, ये जी हमारे प्रोग्राम का लास्ट कसीदा हमने लिस्ट में लगा लिया है, इसके साथ आप लोगों से हम इजाजत भी लेंगे। जाते जाते आपको कहकर जाऊंगी कि आप जरूर डायल कीजिएगा 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सके, और उसके बाद आप जो है ना इजीली जाकर परचेज कर सके। तो आप नंबर जरूर डायल कीजिएगा। इसी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ना मुलाकात मेरी कल वाले प्रोग्राम में होने वाली है। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कहीं पर कोई गलती हो गई तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, जिनके फीडबैक रह चुके हैं जिनकी फरमाइशें चुकी है सभी से माजरत करते हैं। आई किथे मु को एडो लव्स गाले जे को तमा की सठो न लगे तो ने लाइव माजरत कयूं था। सो मुकलानी नाही बाबू सिन सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरानी फेडरल वजीर अब्बास अराग़ची स्विट्ज़रलैंड के दौरे जा इम्कान। अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदो स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड पहुतल। अमरीकी न्यूज वेबसाइट मूजिब स्टीव विटकॉफ ईरान से एटमी मामलों से गालियों लाइ स्विट्ज़रलैंड पहुतो है। ईरानी वफद भी स्विट्ज़रलैंड पहुंचंद। जंगबंदी के ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान से फिजाई हमला जारी। पंज शहरी शहीद केतरा जख्मी। लबनानी अख्तियार मूजिब इसराइली जंगी जहाजन और ड्रोन्स नबतिया के इलाकन में आबादी के निशानो बनाया। इसराइली फौज पारा इमारतन से बमबारी जो सिलसिलो वक्फे वक्फे से जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार मिस्र रवानो। चैन मुल्की परडेही वजीर के इजलास में शिरकत कद। कायरा में थन्द चार मुल्की इजलास में सऊदी अरब तुर्किया मिस्र जहा परडेही वजीर शिरकत कंदा। इजलास में खिते सूरत हाल ईरान अमरीका मामलों से अग भराई जो जायजो वरतो वो। चार सौ सत खरब इकताली अरब पचवंजा करोड़ का जा लाजमी खर्चन जा तफसील कौमी असेंबली में पेश। मुल्की कर्जन से व्याज देने लाय उनहत्तर खरब बयासी अरब का रकम रखी वही। रिपोर्ट मूजिब मुल्की कर्ज देने लाय सौ उनहठ खरब बयानवे अरब वीह करोड़ रुपया रखा वह। मुल्की कर्जन से व्याज देने लाय उनहत्तर खरब बयासी अरब का रकम रखी वही। परडेही कर्जन की वापसी लाय अठवंजा खरब छटी अरब का रकम रखी वही। परडेही कर्जन से व्याज देने लाय दह खरब इकताली अरब उनतालीह करोड़ रुपया रखा वह। सुप्रीम कोर्ट लाय सत अरब चौहतालीह करोड़ रखा वह। वफाकी आईनी अदालत लाय छह अरब चार करोड़ का रकम रखी वही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट लाय ब अरब छटी करोड़। मुख्तस कौमी असेंबली लाय सत अरब छियानवे करोड़ और सेनेट लाय छह अरब बेतालीह करोड़ रखा वह। सदर के पर्सनल ऑफिस के मुलाजमन के अलाउंस लाय एक अरब टियासी करोड़ रुपया मुख्तस। बजट में पघारदार तबके से बार विजन बदरा टैक्स उगाड़ी के बेहतर कर रहा हूं। टैक्स ईंदड़ और उगाड़ी कद ऑफिसर विच में तालुक के खात्मे लाय फिचले सिस्टम आने रहा हूं। कौमी असेंबली में बजट से बहस के सड़ींदे नाणे वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब चाहे तो असि कोशिशन रंग लातो है। खिते में जंग खत्म थी है। पाकिस्तान अमरीका ईरान के गालियों के मेज से विहारो। पाकिस्तान जंग रोकने में अहम किरदार अदा कर। वजीर आजम फील्ड मार्शल अवाम के वादायू पेश क्या तो सिंध असेंबली में बजट से बहस जारी। अपोजिशन मेंबर की बजट से तनकीद। अरन साल का मौजूद मसला हल न थे दाहू। एन क्यूम एम पी ए फहीम पटनी अरणी तरमीम से सूबे में अमल न थे सब मसला। सुबह वफाक का पैसा वही विरासत नो करे। पीपीएमपीए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चो तो चोर दरवाजे का नायू आया। बोर्ड सबब मुझे तक जहाँ मुतासर थल स्कूल ठाए दिना वन आबादगार भी पानी ला परेशान हैं। पंजाब पारा रोकियल पानी वही खोट खत्म कई वे। केपी के इलाके बनू में वेन और कार रोड से लगल बारूदी मवाद से टकराय व्यू। बिन इमदादी कारकुनन समेत सत जणा मार टे जख्मी। डीपीओ बनू चवाए तो अमरक बेरा में रोड भरसा धमाके सबब वेन में सवार पंज और कार में सवार बजणा मार लाश और टे जख्मी। अस्पताल मुंतकिल बारूदी मवाद रोड के किनारे से लगाया व्यू। सिंध के खुराक खाते में अरबे रुपये की करप्शन कदड़ पंज ऑफिसर मुलाजमन के नौकर में निकाली। जिम्मेवार ब अरब पंजाठ करोड़ बाहठ लख का उगाने जो भी हुक्म केस एंटी करप्शन हवाले। फूड इंस्पेक्टर कनकोट बलकशेर शेख। फूड सुपरवाइजर गुलाटी हबीबुल्ला अबड़ो। फूड सुपरवाइजर जोही अली असगर पंवर। फूड सुपरवाइजर मजीद केरियो दीदार हुसैन मंसी। फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली मंसी के नौकरी में निकाली दिनी वही। खुराक खाते के सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़मान चवैत बरतरफ ऑफिसर जहा केस एंटी करप्शन के मोकलिया वह। जिम्मेवार का पैसा उगाने लाय अदालत में सिविल सूट दाखिल किया वा। गोटकी वेझो जमीन के मालिकेत बिंदुरुन में झेड़ो एक जणो कतल। गोट नूर मोहम्मद शर में शर बरादरी के बिंदुरुन में झेड़ो थो। झेड़े दौरान गोली लगन सब राशिद शर मार वो। एक जणे के कतल बाद धुरन में चिकटाण वधी वही। सेवण में चार ढी अग घर ठाण लाय बैंक में पैसा वठण बाद गुम थियल पीरसन जो लाश हथ। गोट नौवाहन के रवासी पीरसन मोहम्मद सदीक हालेपुट जो लाश जहाज चौक तक मिलो। पीरसन के वारसन चवण है तो पीरसन के पैसों की लालच में अगवा बाद तशद करे कतल किया।

कोटली में परणे औरत जो घर में फाव खादल लाश है तो सुमेरा जाल करीम बख्श बबर जो लाश घर में मिलो। औरत के मुड़स करीम बख्श बबर जो चवण है तो आऊँ बहर सामान वटन वयस तो पोया जाल पखे में फाव खाई आपघात कर। पुलिस चवण है तो मामले की जांच कर रहा हूं।

0: इथोरू में आबादगारन पारा पानीकोट खिलाफ़ एहतजाज, पली माइनर सम निकरंदड़ सईद की शाख के पुछली के आबादगारन पानीकोट खिलाफ़ एहतजाज कयो। पानी फराहम करण जो मुतालबो, मीरपुर भठोरो वेझो झोक शरीफ में आबादगारन जो पानी जो खोट खिलाफ़ एहतजाज, रही पानी जो खोट खत्म करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-2196-8051।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी एक भेरों बीहर ईरान के दौरे से मस्जिद पहुंची वो ईरानी मीडिया मौजिब घरू वजीर मोहसिन नकवी ईरानी क्यादत से मुलाकात कद मोहसिन नकवी ईरानी क्यादत के अमरीका ईरान में तय थियल मुहिदे से मुबारक देने से गुड गाल मरल बाबत मुशावरत कद ईरानी पर वजीर अब्बास चिराग़ची अज स्विट्जरलैंड के दौरे का इम्कान अमरीकी खसूसी नुमाइंदो ईस्टर विटकोप स्विट्जरलैंड पहुंतल अमरीकी न्यूज वेबसाइट मौजूद ईस्टर विटकोप ईरान से एटमी मामलों से गाढ़ने लाइ स्विट्जरलैंड पहुंतो है ईरानी वफद भी स्विट्जरलैंड पहुंचो जंगबंदी के ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान से फिजाई हमला जारी पंज शहरी शहीद केतरा ही जख्मी लबनानी अख्तियार मूजिब इसराइली जंगी जहाजन ड्रोन्स नबतिया के इलाकन में आबादियों के निशानों बनाया हुआ इसराइली फौज पारा इमारतों से बमबारी का सिलसिलो वक्त वक्त से जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार मिस्र रवानो चैन मुल्की परडे वजीरन जो इजलास में शिरकत कंदो कायरा में थींदड़ चार मुल्की इजलास में सऊदी अरब तुर्किया मिस्र जा परडे वजीर शिरकत कंदा इजलास में खिते सूरत हाल ईरान अमरीका मामलन ते अकबराई जो जायजो वरतो वेंदो। 407 अरब 41 करोड़ का वधिक जा लाजमी खर्चन जा तफसील कौमी असेंबली में पेश मुल्की कर्जन से व्याज देने लाय 69 अरब 82 अरब का वधिक रकम रखी वही रिपोर्ट मौजूद मुल्की कर्ज देने लाय 289 अरब 92 अरब 20 करोड़ रुपया रखा वह मुल्की कर्जन से व्याज देने लाय 69 अरब 82 अरब का वधिक रकम रखी वही परडे कर्जन की वापसी लाय 58 अरब 36 अरब का वधिक रकम रखी वही परडे कर्जन से व्याज देने लाय 10 अरब 41 अरब 39 करोड़ रुपया रखा वह सुप्रीम कोर्ट लाय 7 अरब 44 करोड़ रखा वह वफाकी आईनी अदालत लाय 6 अरब 4 करोड़ का वधिक की रकम रखी वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाय 2 अरब 36 करोड़ मुख्तस कौमी असेंबली लाय 7 अरब 96 करोड़ ए सेनेट लाय 6 अरब 92 करोड़ रखा वह सदर के पर्सनल ऑफिस के मुलाजमन के अलाउंस लाय 1 अरब 83 करोड़ रुपया रखा वह। बजट में पगारदार तबके से बार विझण बदरा टैक्स उगाड़ी के बेहतर कर रहा है टैक्स दींदड़ ए उगाड़ी कदड़ ऑफिसर विच में तालुक के खात्मे लाय फीसले सिस्टम आणू पाया कौमी असेंबली में बजट से बहस के सेड़ींदे नाणे वे वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब है तो असि कोशिश रंग लातो है खिते में जंग खत्म थी है पाकिस्तान अमरीका ईरान के गालन के मेज से विहारो पाकिस्तान जंग रोकने में अहम किरदार अदा कर वजीर आजम फील्ड मार्शल अवाम के वादायू पेश किया तो सिंध असेंबली में बजट से बहस जारी अपोजिशन मेंबर की बजट से तनकीद अरब साल का मौजूद मसला हल न थियण जो दाहूँ एम क्यू एम एम पी ए फहीम पेटनी अरड़ी तरमीम से सूबे में अमल न थियण सब मसला है सूबो वफाक का पैसा वी विरासत नो करे पी पी एम पी ए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चोर दरवाजे का नायू आया बोर्ड सवा मुझे तक या मुतासर थे स्कूल ठाए दिना वन आबादगार व पानी ला परेशान है पंजाब पारा रोकियल पानी वी खोट खत्म कई वे आजाद कश्मीर में अमन तबाह करने वाली भारतीय कोशिश नाकाम थी पाकिस्तान खिलाफ कम कदड़ टोलन जो तालुक भारत से ही साबित थन्द है पार्लियामेंट में सहाफिन से गाले ख्वाजा आसफ चाहवा वाल कश्मीर में भारतीय जुल्म जो रिघो दास्तान है पाकिस्तान में दहशतगर्दी पुठियां भारत अफगानिस्तान ज हथ लाहौर की दहशतगर्दी टुट अदालत 9 मई से पुलिस जो गाड़ियों साण वाले केस जो फैसलो बुधा छोड़ो शाह मोहम्मद कुरैशी बरी यासमीन राशिद उमर सरफराज चीमा है एजाज चौधरी के 10 साल कैद की सजा लाहौर की दहशतगर्दी टुट अदालत कोट लखपत जेल में केस जो फैसलो बुधा
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाए 0385-569-0309
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोज होंडा शोरूम मेहराबपुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मोहम्मद उमर गोरी 0319-1550-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप
1: पाकिस्तान अमेरिका ईरान विच में गालियन दौरान आयल डेडलॉक खत्म करने लाय कोशिशों तेज कर छियं। करू वजीर मोहसिन नकवी ईरान के अहम दौरे से मशहद पहुंची वो। अमेरिका ईरान विच में तय थियल मुफाहमत से ईरानी क्यादत से गालियन के बे दौरे से मुशावरत कंदो। मशहद पहुंचने से ईरानी अख्तियारन मोहसिन नकवी की आजियां कई। अमरीकी न्यूज वेबसाइट मूजिब ईरान से गालियन के बे मरहले लाय अमरीका जो खसूसी नुमाइंदो स्टुअर्ट कोफ स्विट्जरलैंड पहुंतल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मिस्र रवानो। चार मुल्की परडेही वज़ीरन के इजलास में शिरकत कंदो। काहिरा में थींदड़ चार मुल्की इजलास में सऊदी अरब तुर्किया ए मिस्र जा परडेही वज़ीर शिरकत कंदा। इजलास में खत्ते की सूरतहाल ईरान अमरीका मामलन ते अगभराई जो जायजो वरतो वेंदो। उज़्बक परडेही वज़ीर जो भी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से फोन ते राब्तो। उज़्बक परडेही वज़ीर ईरान अमरीका माहिदे ते वाधायूं डिनियूं। उज़्बक परडेही वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के भी भेटा पेश कई। जंगबंदी के ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान ते फजाई हमला जारी। सत शहरी शहीद केतरा ही जख्मी। लबनानी अख्तियारन मूजिब इसराइली जंगी जहाजन ए ड्रोन्स निपतिया के इलाकन में आबादियों के निशानों बनायो। इसराइली फौज पारा इमारतन ते बमबारी जो सिलसिलो वक्फे वक्फे से जारी है। कौमी असेंबली 441 अरब 55 करोड़ का वधिक जे लाजमी खर्चन जी मंजूरी डेई छदी। मुल्की कर्जन ते ब्याज देण लाय 69 खरब 82 अरब का वधिक रकम रखी वई। मुल्की कर्ज देण लाय 269 खरब 92 अरब 20 करोड़ रुपया रखिया व्या। मुल्की कर्जन ते ब्याज देण लाय 69 खरब 82 अरब का वधिक रकम रखी वई। परडेही कर्जन जी वापसी लाय 58 खरब 36 अरब का वधिक रकम रखी वई। परडेही कर्जन ते ब्याज देण लाय 10 खरब 41 अरब 39 करोड़ रुपया रखिया व्या। सुप्रीम कोर्ट लाय 70 अरब 44 करोड़ रखिया व्या। वफाकी आईनी अदालत लाय 6 अरब 4 करोड़ का वधिक जी रकम रखी वई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाय 2 अरब 36 करोड़ मुख्तस। कौमी असेंबली लाय 70 अरब 96 करोड़ ए सेनेट लाय 6 अरब 42 करोड़ रखा गया। सदर जे पर्सनल ऑफिस जे मुलाजिमन जे अलाउंसेस लाय 1 अरब 83 करोड़ रुपया मुख्तस कया गया।

0: बजट में पघारदार तबके ते 12 जन बदरां टैक्स उगाड़ी के बेहतर करे रहा हूं। टैक्स दींदड़ उगाड़ी कदड़ ऑफिसर विच में तालुक जे खात्मे लाए फीस लेस सिस्टम आणे रहा हूं। कौमी असेंबली में बजट ते बहस के सेड़ींदे नाणे वारे फाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब चयो आहे त असांजी कोशिश रंग लाथो आहे, खिते मां जंग थी आहे। पाकिस्तान अमरीका ईरान के गालियों की मेज से बिहारियों पाकिस्तान जंग रोकने में अहम किरदार अदा कर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल अवाम के वाधायू पेश कया तो। सिंध असेंबली में बजट ते बहस जारी, अपोजिशन मेंबर सूबाई बजट के रद्द करे छोड़ो, सालन का रयल तरक्याती मनसूबा मुकम्मल न थियण ते सख्त तंकीद, हुकूमती मेंबर्स पारा बजट की वाखाण, तरक्याती मनसूबन की तारीफ कंदा रहा एमक्यूएम जे एमपीए फहीम पटनी चयो त अरणी तरमीम ते सूबे में अमल न थियण सबब मसला पैदा थिया आहिनि, सूबो वफाक खां पैसा वठी विरासत नथो करे। पीपी एमपीए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चयो त चोर दरवाजे खां नाहियूं आया बोर्ड सबब मुंहिंजे तक जा मुतासिर थियल स्कूल ठाहे ॾिना वञनि, आबादगार बि पाणी लाइ परेशान आहिनि, पंजाब पारां रोकियल पाणी वठी कोर्ट ख़तम कई वञे। नाना सनाउला बजट पास वज़ीर आज़म की तब्दीली वाली खबर के रद्द कर छोड़ो, पार्लियामेंट में मीडिया से गालाइंदे वज़ीर आज़म के सलाहकार राना सनाउला चयो त वज़ीर आज़म बेहतरीन कम कर रो है, कुछ मानू कूड़ियों खबरू पखेड़े मुल्क में अदम इस्तेकाम पखेड़ चाहन था, अड़ो को मामलो ना है। लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 मई ते पुलिस जो गाड़ियों साड़ वाले केस जो फैसलो बुधाए छो, शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, सीमा एजाज चौधरी के 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत कोट लखपत जेल में केस जो फैसलो बुधायो। पानी की बदतरीन खोट के मुंह डींदड़ सिंध मथा बलोचिस्तान जो पानी चोराण जो इल्जाम, मॉनिटरिंग लाए बलोचिस्तान जो फर्द सखर बिराज पहुंतो, आपाशी खाते बलोचिस्तान जे अमलदार मुदसिर जफर कोसो चयो त खीरतर केनाल की घुर्ज 2400 क्यूसिक है, असांखे रुगो 1100 क्यूसिक पानी मिले तो बाकी पानी चोरी थी वने तो। सखर बिराज की इंतजामिया जवाब डींदे चयो त सिंध के पैंजे हिस्से जो पानी नथो मिले, पानी चोराण जो इल्जाम बेबुनियाद है, कुफर डैम के हटाने बाद सूरतयाल में बेहतरी थींदी। सिंध के खुराक खाते में अरबे रूपये की करप्शन कदड़ पंज ऑफिसर मुलाजमन के नौकरियों मां निकाली, जिम्मेवार 2,65,62,00,000 का उगड़ जो भी हुक्म, केस एंटी करप्शन हवाले फूड इंस्पेक्टर कंदकोट बलखशेर शेख, फूड सुपरवाइजर गुलारसी हबीबुल्ला अबड़ो, फूड सुपरवाइजर जोही अली असगर पवार, फूड सुपरवाइजर मजीद कीरियो, दीदार हुसैन बक्सी, फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली बक्सी के नौकरी में निकाली डिनी वही। खुराक खाते की सूबाई वजीर मखदूम महबूब जमान चयो है त बरतरफ ऑफिसर जा केस एंटी करप्शन के मोकलिया वह जिम्मेवार का पैसा उगड़ने लाए अदालतन में सिविल सूट दाखिल कया वा। घोटकी वेझो जमीन की मालिकता बिन धुरियन में जेड़ो, एक जड़ो कतल, घोट नूर मोहम्मद शहर में शहर बिरादरी की बिन धुरियन में जेड़ो थियो, जेड़े दौरान गोलियों लगन सबब राशिद शहर मार जीवो, एक जड़े के कतल बाद धुरियन में छिकताण वधी वही, सेवण में 4 दिन अग घर ठाण लाए बैंक में पैसा वठण बाद गुम थियल पीरसन जो लाश हथ, घोट नव वाहण के रवासी पीरसन मोहम्मद सिद्दीक आले पोटो जो लाश जहाज चौक ता मिलो, पीरसन के वारिसन जो चवण आए तो पीरसन के पैसन की लालच में अगवा कत्ल है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बार दस्तियाब
2: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03

0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समात ते पहुचे पियो। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। अवां सभिनी सजननि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। 0301-91-8051, कॾहिं बि मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु वेठो आहे, इलाजु कंदो, शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे। उनखे गुर्दे में पथरी आहे, पिते में पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उन में उनखे कॾहिं बि मायूस नाहे थियणो। बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। ॾाढी मूंखे जेको पहिरियों कॉलर हो डॉक्टर साहिबु जेको चयो, मुंहिंजो मांस लही थो पए। सुठी ॻाल्हि आहे, ॾिसो बीमारी आहे, उनखे कॾहिं बि लिखाइण न घुरिजे।
1: जी साईं, बिल्कुलु,
0: उनखे लिखाइण न घुरिजे ऐं उनजो तव्हां इलाजु करायो, बर वक़्तु इलाजु करायो। त जीअं जीअं बुखार थींदो आहे डॉक्टर साहिबु, माण्हू पहिरियां उनखे बुखार न आहिनि सम्झंदा, इलाजु न आहिनि कराईंदा प्रॉपर तरीक़े सां। पहिरियां चवनि था हीअ टेबलेट खाऊं था, वरी चवनि था हीअ खाऊं था। टे ॾींहं गुज़री विया, चारि ॾींहं गुज़री विया, पंज ॾींहं, अहिड़ी तरह अठ ॾींहं गुज़री विया। जंहिं ॾींहुं 10-12 ॾींहं बुखार खे गुज़रंदा आहिनि, त उहो आम बुखार वॾे बुखार में तब्दील थी वेंदो आहे। साईं ईअं ई थींदो आहे?
1: बिल्कुलु थींदो आहे।
0: उहो नतीजो छा आहे वॾे बुखार में कीअं तब्दील थियो, जो असां पहिरियां उनजो इलाजु प्रॉपर तरीक़े सां न कयोसीं।
1: बिल्कुलु सही।
0: टे ॾींहं जीअं बुखार जी हिकिड़ी लिमिट हूंदी आहे, त भई टे ॾींहं बुखार रही सघे थो। तव्हां इलाजु करायो त बुखार हिकु कंहिं तकलीफ़ जी इलामत हूंदी आहे, तव्हांखे उहो छॾे वञे। त जीअं तव्हांखे वॾो बुखार जो जेको हूंदो आहे अक्सर करे, डॉक्टर साहिबु इन ते बि थोरी नज़रसानी कजो। अॼुकल्ह गर्मियुनि में बुखार घणा थींदा आहिनि माण्हुनि खे, ऐं वॾो बुखार बि जेको आहे घणो ई जेको आहे अक्सर थींदो आहे।
1: बिल्कुलु,
0: इन ते पोइ चवंदा आहिनि आंड्रे में माना ज़ख़्म हूंदो आहे, खणा पोइ सिर्फ़ु कश खाओ। सिंधी पराड़ी में ईअं ई आहे।
1: बिल्कुलु, एक्चुअल हू बि हिते इहो ई दस्तूर आहे, जेकॾहिं थोरो घणो थींदो आहे त माण्हू सेल्फ़ मेडिकेशन जे तरफ़ वेंदा आहिनि, यानी पाण मुरादो जेको आहे सो दवा कराईंदा आहिनि, स्टोर ते वेंदा आहिनि। हीअ आहे तकलीफ़, हे मिसाल डिस्प्रिन ॾियो, ॿ गोरी खाई छॾियूं, पेनाडोल खाई छॾी, फलाण खाई छॾी। डिस्प्रिन ॿ गोरियूं खाइण सां या अहिड़े क़िस्म जे इलाज करण सां मूंखे ख़बर आहे तव्हांजो मादो तमामु मुतासिर थी सघे थो, उन में अल्सर थी सघे थी। लेकिन जॾहिं इहे ई दवा पंहिंजे कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारे करे उन जे डाइग्नोस सां, या जेको असां अदरवाइज़ को ॿियो इलाजु कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारे, कंहिं ॼाणू माण्हू खे ॾेखारे, उन खां पोइ जेकॾहिं कयो वेंदो त उहो अव्हांजो इलाजु सजायो थींदो, ऐं इन सां अव्हांजी सिहत मुतासिर न थींदी। लेकिन वरना अहिड़े तरीक़े सां इलाजु करण सां अॼुकल्ह दवाउनि जा हुई बि साइड इफ़ेक्ट तमामु घणा आहिनि, ऐं पोइ तव्हांखे ॿियो नुक़सानु थी सघे थो। ऐं ॻाल्हि कजे जेकॾहिं वॾी बुख़ार जी, त वॾो बुख़ार ते असां यानी तव्हांखे यादि हूंदो त कुझु टाइम अॻे ॻाल्हायो बि हुओसीं, त उहो जेको माण्हू सफ़ाई सही पंहिंजी नथो करे, ऐं टाइफाइड उनखे टाइफाइड थी वेंदो आहे, यानी ॾिसो जेको माण्हू बाथरूम वॉशरूम करे आयो ऐं उन सही हैंड वॉश न कया, इहो जेको जरासीम हूंदो आहे टाइफाइड रॉट, इहो इतां ई जेको आहे सो पैदा थींदो आहे, ऐं उहो वञी पोइ आंड्रे में ज़ख़्म कंदो आहे, ऐं पोइ इन बीमारी सां, इन बीमारी जे वधी वञण सां मौत बि वाक़िअ थी वेंदो आहे। यानी असांजी नंढड़ी गफ़लत जेकी मां ॻाल्हि कई त पहिरियां पंहिंजी सफ़ाई करणु घुरिजे, उन खां पोइ जेके ॾिसो हीअ जेके असां वटि जेके बि शहर में जेके पकौड़ा समोसनि जा गाॾा, या जेके मिसाल हिकिड़ो आइसक्रीम वग़ैरह या अहिड़े क़िस्म जा गाॾा जेके हूंदा आहिनि, त शहर में मखियुनि जा अंबार बि लॻल आहिनि, गटरनि जे भरिसां, नालियुनि जे भरिसां हूंदा आहिनि। पोइ उहे मखियूं जेको आहे उतां गंदगी तां वेही करे, या जेके जलेबियूं वग़ैरह अहिड़े क़िस्म जी शयूं आहिनि उन्हनि ते अची, ऐं पोइ वरी उहे जेको आहे सो वेहंदियूं आहिनि, उहो जरासीम उन्हनि में ट्रांसफर थी वेंदो आहे, ऐं वरी जॾहिं उहे माण्हू जॾहिं दवाऊं माण्हू खाईंदो आहे, शयूं खाईंदो आहे, उन मां उहो जेको आहे सो इन्फेक्शन थींदो आहे। मुल्क जो वॾे में वॾो बादशाह सिकंदर जेको आहे सो बादशाह, उनखे बि इहो ई जरासीम थियो हो टाइफाइड रॉट, जंहिंसां हू जेको आहे सो मौत उनजो वाक़िअ थी वियो। त इहे हिकिड़ियूं नंढड़ियूं गफ़लतूं आहिनि, इन जे करे पंहिंजो पाण खे प्रोटेक्ट रखण जे लाइ थोरी घणी पंहिंजी केयर तमामु करणु ज़रूरी हूंदी आहे। जॾहिं बि तव्हां घरनि में अॼुकल्ह ॾिसो जेको आहे सो तव्हां खाधो वग़ैरह खाओ था, त थांव तव्हांजा खुलिया ई रहंदा आहिनि या कीअं, त उन्हनि ते जेको आहे सो मखियूं अची वेंदियूं आहिनि, त उहे जेको आहे सो उन सां उहो जरासीम उते अची सघे थो ऐं तव्हांजी सिहत मुतासिर थी सघे थी। इन जे करे जेको आहे सो जेको बि तव्हां खणो थो उनखे वॉश करे ऐं इस्तेमालु कयो, ऐं कुझु जॾहिं बि का शइ खाओ त हैंड वॉश करे ऐं पोइ जेको आहे सो इस्तेमालु कयो, त उन सां अव्हांजी सिहत बहितर रही सघे थी। वरना जेको आहे सो इहो जॾहिं अच्छा जॾहिं इहो जिवड़ो जिस्म में दाख़िलु थी वञे थो, त पोइ तमामु तेज़ जिस्म में सूर ऐं तेज़ बुख़ार बार बार अचणु, ऐं ख़ासि करे राति जे टाइम

ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद मफ़ामदी याददाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदो। स्टीव विटकॉफ ऐं जेड कुशनर ते ॿधल अमरीकी वफ़द अॻुवाटी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ईरानी वफ़द बि स्पीकर बाकिर कालिबाफ जी अॻुवाणी में तहरान खां स्विट्ज़रलैंड रवानो थी वियो। परॾेही वज़ीर अब्बास राखची बि वफ़द जो हिसो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ॻाल्हियुनि जो हिसो थियण जो इम्कान। अमरीकी नायब सदर बि स्विट्ज़रलैंड वञण जो इशारो ॾेई छॾियो। जेडी वेंट्स चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि बाबति मामला सुठे तरीक़े सां हली रहिया आहिनि। ॻाल्हियूं सुभाणे शुरू थींदियूं।

0: लॻे थो त ॻाल्हियुनि में शिरकत लाइ मां बि कुझु ॾींहनि में स्विट्ज़रलैंड वञा।
1: ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं सुभाणे स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गन स्टॉक में थी रहियूं आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जा नुमाइंदा बि सालिस तौर ॻाल्हियुनि में शरीक थींदा। पहिरीं तर्जुमान तारिफ़ सेनिदरा बि चयो आहे त पाकिस्तान सालिस तौर इस्लामाबाद मुफ़ामती याददाश्त खे अॻिते वधाइण में सहूलतकारी जारी रखंदो।

0: ईरान अमेरिका अमुन मुआहिदो इसराइल का हज़म न थो जंगबंदी के ऐलान बावजूद लबनान ते फिजाई हमला सत शहरी शहीद केतरा ही जख्मी लबनानी अख्तियार मूजिब इसराइली जंगी जहाजन ए ड्रोन्स नबतिया के इलाकन में आबादन के निशानो बनाया इसराइली मीडिया मूजिब नेतन्याहू लबनान ते हमला रोकने जो हुक्म दे छोड़ा है।
1: ईरानी फौज लबनान ते इसराइली हमलन बाद आपना हरमुस के बीहर बंद करे छो। ईरान की गडियल मिलिट्री कमांड चया है आपना हरमुस बहरी जहाजन लाए बंद रहंदो। हरमुस के मुफामती याताची भजकड़ी ते बंद कयो वियो। लबनान ते इसराइली हमला या भी जारी आहन। हमला जारी रहा तो वधिक सख्त कदम खया वेंदा।
0: قومی اسمبلی 407 خرب
2: $50 ان کیش اور $100 اون پرائمیکس بی ٹی
3: $100 on Primex BT. The process of navigating market trends on Primex BT is incredibly intuitive. The interface is clean with nothing unnecessary. You simply select the desired asset list and the data updates instantly. The platform's speed is top-notch. No system lag or delays. It allows you to quickly assess current chart indicators, spot large clusters of data movements, and pinpoint the perfect observation point for any asset. The full transparency of charts gives you maximum control over your market analysis. The platform also offers several quick and convenient ways to customize your workspace so you can choose the setup that suits you best. Download Primex BT and keep all your market insights in one pocket.
0: Islamabad High Court lai be 236 crore rakhya vaya jade ta qaumi assembly lai 7096 crore ae senate lai 6042 crore rupya rakhya vaya sadar je personal office ji mulazman ji allowances lai 1083 crore rupya muktas.
1: बजट में पघारदार तबके ते 12 जन बदरा टैक्स उगाड़ी के बेहतर करे रहा हूं। टैक्स दीदड़ ए उगाड़ी कंदड़ ऑफिसर विच में ताल्लुक के खात्मे लाए फीसलेस सिस्टम आने रहा हूं। कौमी असेंबली में बजट ते बहस के सड़ी दे नाणे वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब चयो है त असा जी कोशिश रंग लाथो है। खित्ते मां जंग थी है पाकिस्तान अमेरिका ईरान के गालियन जी मेज से बिहारियो। पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कियो। वजीर आजम फील्ड मार्शल ए अवाम के वादायूं पेश कया तो
0: सिंध असेंबली में बजट ते बहस जारी। अपोजिशन मेंबर सूबाई बजट के रद्द करे छो। सालन का रहल तरक्याती मनसूबा मुकम्मल न थियण ते सख्त तनकीद। हुकूमती मेंबर्स पारां बजट की वाखाण। तरक्याती मनसूबन की तारीफ कंदा रहा। एमक्यूएम के एमपीए फहीम पटनी चयो त अर्ली तरमीम ते सूबे में अमल न थियण सब मसला आहिन। सूबो वफाक खां पैसा वठी विरासत नथो करे। पीपल्स पार्टी एमपीए नूर मोहम्मद भुरगड़ी चयो आहे त चोर दरवाजे खां नाहियूं आया। ओड सबब मुझे तक जा मुतासिर थियल स्कूल ठाहे दिना वन। आबादगार भी पानी ढुक लाए परेशान आहिन। पंजाब पारा रोकियल पानी वठी खोट खत्म की वन।
1: राणा सनावला बजट बाद वजीर आजम की तब्दीली वाले खबर के रद्द कर छो। पार्लियामेंट में मीडिया से गालाइंदे वजीर आजम के सलाहकार राणा सनावला चयो त वजीर आजम बेहतरीन कम कर रो है। कुछ मानू कूड़ियों खबरों पखेड़े मुल्क में अदम इस्तेकाम पखेड़ चाहन था। अड़ो को मामलो ना है।

लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 मई ते पुलिस जो गाड़ियों साड़ने वाले केस जो फैसलो बुधाए छो। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी के 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत कोर्ट लखपत जेल में केस जो फैसलो बुधाया।

0: उहो पंजाब जेको घोड़ा घोड़ा कई त सिंध पंहिंजे शहर जो पाणी पी वियो आहे, कब नदी जो पाणी हो, असां घुरियो त कोन हो, असांजी डेंट त कोन ॾिना हा त असांखे एतिरो पाणी पाणी असांजो काउंट उहो थींदो जेको इंडेंट जे ज़रिए थींदो। अॼु बि तव्हां ॾिसो निल आहे, डाउन स्ट्रीम कोठड़ी निल आहे, ऐं ॾिसो न इहे जून पियो पूरो थिए, जुलाई पियो शुरू थिए, 15 मई खां पोइ सारियुनि जा वेचारा पोखंदा आहिनि, सारियूं हींअर काफ़ी हद ताईं वॾियूं थी चुकियूं हुजनि हा, ऐं सारियूं न पोखे सघनि। हाणे जे सारियूं हींअर पोखंदा, इहा ज़्यादती आहे, वॾो ज़ुल्म आहे। नान पैरी नल ते हिकिड़ो ई क्राप थो थिए सॼो साल, उहो इन ते ई डिपेंड था कनि। इर्साद ते बाक़ाइदे केस कयो वञे, सिंध गवर्नमेंट खपे त CCI में इहो केस खणी वञे।
1: सिंध में खतरनाक हद ताईं पाणी जी खोट, कोठड़ी बैराज डाउन स्ट्रीम में गुज़िरियल 1.5 महीने खां पाणी छोड़ मुकमल तौर बंद, दरिया जे पेट में वारी उॾामण लॻी। कोठड़ी बैराज जो मथां वकिरो 18,195 क्यूसिक ऐं हेठां वकिरो 0 रिकॉर्ड। कराची वाह, फुलेली, पिंजारी ऐं फुलेली वाहन में पाणी जी शदीद खोट। हैदराबाद, बदीन, सजावल, टंडो मोहम्मद खान में कमंद ऐं पुटियन जा फसल सुकी विया। पाणी न अचण जी सूरत में इलाइक़े में सूरत हाल वधीक ख़राब थियण जो ख़दशो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3583-569।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारह इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया।

0: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनलपट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
0: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

घारों में हथियारबंधन की फायरिंग में ब पुलिस अहलकार शहीद। भरोसर कॉलोनी रोड से मोटरसाइकिल सवार हथियारबंधन गोलियों हणी बिन पुलिस अहलकारन के शहीद कर छो। शहीद अहलकारन की टंडो अलियार वासी अकबरी मरी ए मजीद मरी तौर सुणप। बिन्हीं अहलकारन के डेढ़ महीनों अग एस एस पी टंडो अलियार जिले बदर कर ठठे उमाण्य हो। एस एस पी ठठो साजिद अमीर सदोजई के टी एन न्यूज से गालेंदे है तो वाक्य सिज लथे पेश आयो। टिन मोटरसाइकिल सवार हथियारबंधन अहलकारन के फायरिंग कर शहीद कर। हथियारबंधन पारा शहीद अहलकारन जा सरकारी हथियार खड़ी वन वे मामले की जांच कर रहा आय। जवाबदार की गिरफ्तारी लाए इलाके की नाकाबंदी भी कई वही है।

0: टपकू आयो पंजाब जो घोड़ा घोड़ा कई तो सिंध पांजे शहर जो पानी पी वो है कब नदी जो पानी हो असा घुरियो तो कोनो असा इंडेंट तो कोने दिना हा तो असा केतरो पानी पानी असा जो काउंट वो थींदो जेको इंडेंट जे जरिए थींदो अज भी तुम दिसो निल है डाउन स्ट्रीम कोटड़ी निल है दिसो न ये जून पे पूरो थे जुलाई पे शुरू थे पंद्रह मई का सारे जहाँ बेचारा पोखंदा सारियों ये काफ़ी हद तीन वड्यू थी चुकी हैं जना सारू न पोखे सकन हाँ जो सारियों हिंसर पोखंदा यह जाति है वो जुलम आकड़ो ही खराब तो थे सजो साल वो इन्हीं ते डिपेंड था कन इर्साद ते बाकायदे केस कयो वञे सिंध गवर्नमेंट खपे त सीसीआई में इहो केस खणी वञे
1: सिंध में खतरनाक हद ताईं पाणी जी कोट कोटड़ी बैराज डाउन स्ट्रीम में घुसियल डेढ़ महीने का पाणी चोड़ मुकम्मल तौर बंद दरिया जे पेट में वारी उडावण लगी कोटड़ी बैराज जो मथां वेकरो 18,195 क्यूसिक हेठां वेकरो जीरो रिकॉर्ड कराची वाह फुलेली पिनारी ए फुलेली वाहन में पानी की शदीद कोट हैदराबाद बदीन सजावल टंडो मोहम्मद खान में कमत ए पुटियन जा फसल सुखी व्या पानी न अचण की सूरत में इलाके में सूरत हाल खराब थे जो खदशो

ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदो। स्टीव विटकॉफ ऐं जेरेड कुशनर ते ॿधल अमरीकी वफ़द अॻुवाटी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ईरानी वफ़द बि स्पीकर बाकिर कालिबाफ़ जी अॻुवाणी में तहरान खां स्विट्ज़रलैंड रवानो थी वियो। परॾेही वज़ीर अब्बास राक्ची बि वफ़द जो हिसो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ॻाल्हियुनि जो हिसो थियण जो इम्कान। अमरीकी नायब सदर बि स्विट्ज़रलैंड ॾेई छॾियो। जे डी वेंस चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि बाबति मामला सुठे तरीक़े सां हली रहिया आहिनि। ॻाल्हियूं सुभाणे शुरू थींदियूं। थी सघे थो त ॻाल्हियुनि में शिरकत लाइ मां बि कुझु ॾींहनि में स्विट्ज़रलैंड वञा।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।